90FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इस गर्मी वाले सीजन से कुछ राहत मिली आपको? थोड़ी सी तो मिली ही होगी। वैसे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस से मिलकर हमें तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और दोस्तों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार करना हमें बखूबी आता है। अर्ज किया है, अगर चलती रहूं मैं अपनी मंजिल की ओर तो हो सकती है इनमें से एक बात या तो मिल जाएगी मंजिल, मतलब ऑडियंस का साथ, या फिर यूं ही चलता रहेगा सफर और मिलूंगी आपसे शुक्रवार की शाम और सोमवार की दोपहर, जब साथ होंगे यहाँ ऑडियंस जी आप जैसे हम सफर, तब गर्मी की मार होगी धीरे धीरे बेअसर। स्वाद का जायका निभाने का ये वादा, मनोरंजन से भरपूर और गाने भी ज्यादा, खाने के माध्यम से दिल को लुभाना मींस अपनापन जताकर दोस्ती को निभाना। स्वागत है ऑडियंस जी आपका इस शो पर, नई रेसिपीज को लाई हूँ आप ही के लिए ढूंढ कर। भारतीय सीमा के रसोई वाले राज साथ में बजेंगे सुमधुर और सुरीले साज। हमारी आज की पहली रेसिपी है एक स्पेशल टाइप का लड्डू। इस लड्डू में इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल चीज गर्मी को मात देने के साथ हमारे देसी खाने को खूबसूरत भी बनाएगी। ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, दिखने में मोतियों जैसे है और इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और शरबत बनाते समय इसे यूज किया जाता है। जनाब सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब्जा की। जब सब्जा को पानी में भिगोकर रखते हैं तब ये फूल कर जेली की तरह बनता है। सब्जा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा

0: का सेवन हर रोज कीजिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब हम इस सब्जा के लड्डू को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सब्जा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सब्जा के बीज 100 ग्राम, नारियल का पानी आवश्यकता के अनुसार। नारियल के पानी में हमें सब्जा के बीज को सोक करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 कटोरी भर के पानी मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए ताजा नारियल 1, हेल्दी वाला ब्राउन गुड 200 ग्राम, देसी घी 4 चम्मच, मिल्क मसाला 4 चम्मच या फिर काजू और बादाम 7-8। उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी काला मुनक्का 15 से 20, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1 चुटकी भर। जायफल पाउडर को यूज करना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इसकी रेसिपी को सुनने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, फिर उसमें डालिए सब्जा के बीज। हमें सब्जा के बीज को भिगोना है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इन्हें नारियल के पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब्जा के बीज को नारियल के पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप टेक्सचर आपको जब दिखे, तब समझ लीजिए कि सब्जा के बीज अब यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें ताजा नारियल कद्दूकस करके लेना है। कद्दूकस मीन्स ग्रेटेड। फिर ब्राउन गुड को बारीक टुकड़ों में काटकर रेडी रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें पतले टुकड़ों में काटकर तैयार रखिए। हे भगवान, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। अब एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।
1: आंखें खुली हो या

बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सब्जा के लड्डू बनाने की तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप लीजिए एक नॉनस्टिक पैन या बड़ी सी कढ़ाई, फिर इसमें डालिए शुद्ध देसी घी, उसके बाद इसमें ताजा नारियल और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। इसे पकाते समय गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, अदरवाइज ये मिश्रण जल सकता है और आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ऐड कीजिए सब्जा के बीज। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के बाद ये मिश्रण रेडी हो जाएगा और तब तक इसे अच्छे से पकाते हुए आपको चम्मच चलाते रहना है। गुड़ और नारियल का टेक्सचर जब एक साथ मिलेगा तब इसे टेस्ट करने के लिए आपका मन जरूर लग जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी कर लीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि सब्जा के लड्डू चखने के लिए हम भी बैठे हैं कब से बेकरार। अब आगे क्या करें तो भाई सुनिए, आगे हमें ये करना है कि इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डालना है। इसे भी मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाना है। ऐसा करते समय आपका किचन मनमोहक खुशबू से भर जाएगा। फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, इस मिश्रण को ठंडा होने दीजिए और तब तक हमें वेट करना है। लड्डू बनाने का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, फिर अपने हाथों पर आप थोड़ा सा घी लगाइए। उसके बाद तैयार मिश्रण से नींबू के साइज के लड्डू को बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर एक एक करके सब्जा के सारे लड्डुओं को आप उस प्लेट में रख दीजिए। जब सारे लड्डू तैयार हो जाए तब लगभग एक घंटे तक उन्हें सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें फैन के नीचे भी रख सकते हैं। क्योंकि ये लड्डू हमने ताजे नारियल को यूज करके बनाए हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा। इन लड्डुओं को एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। वैसे ये सब्जा लड्डू होते हैं इतने टेस्टी कि झटपट खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी इन्हें खाने का मन करे तब आप आधा घंटा पहले इन्हें बाहर निकाल कर रखें। ऐसा करने से इसका ठंडापन कम होकर ये रूम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टेस्टी और हेल्दी सब्जा के लड्डू हो गए हैं तैयार। सुबह के नाश्ते में आप इन सब्जा के लड्डुओं को जरूर खाएं। ऐसा करने से आप दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से करेंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सब्जा के लड्डू की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है गोल मटोल लड्डू। गोल मटोल से मीठे लड्डू बनाने डाला सब्जा, इसका टेस्ट है ऐसा अनोखा कि मेरे दिल पर किया कब्जा। जब जब देखूं मैं थाल में भरे ये मीठे मीठे लड्डू, तब सारा डाइटिंग भूलकर इन पर हो जाऊं लट्टू। जब जब हो जाता संगम घी गुड़ और कोकोनट, तब इनका सेवन करके आप जरूर पाएंगे हेल्दी गट। देसी घी और ब्राउन गुड़ देगा इतनी ताकत कि बीमारी रहेगी दूर और ना आएगी कोई आफत। लड्डू में भी छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज। हमारे शो में शामिल है रेसिपीज और सुरीले साज। जब होगी ऑडियंस जी किचन में आपकी एंट्री, तब लगाइए आचार्य 90 FM और सुनिए गाने, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। हमारी अगली रेसिपी का नाम है क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। गर्मी के लिए ये बेहद ताजगी भरा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है। इसे घर पर बनाना एकदम आसान है। खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनाया गया ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको चिलचिलाती धूप में तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा। यूजुअली मॉकटेल में ताजे फलों का रस,
सिरप, जड़ी बूटियां और सोडा या कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिन पिनाकोलाडा, वर्जिन मोहितो, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और सिंड्रेला, ऐसे कई सारे मॉकटेल्स फेमस हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल, ये ड्रिंक लैटिन अमेरिकन अगुआ फ्रेस्का और इंडियन खीरा नींबू शिकंजी का लेटेस्ट वर्जन है। वैसे दुनिया भर के कैफे में ये काफी फेमस है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, म्हणजे आपली काकड़ी, एक बड़ी सी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां 10 से 12। चीनी या शहद स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए काला नमक 1 चुटकी, स्प्राइट 2 ग्लास, बर्फ के टुकड़े 4 या 5, ये ऑप्शनल है। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए। फिर आगे क्या, आगे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बना रहे हैं क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। ककड़ी को हमने अच्छे से धो तो लिया है। इसे यूज करने से पहले आप उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट कीजिए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कड़वी ककड़ी मीन्स खराब ककड़ी। हमें नॉर्मल टेस्ट वाली ककड़ी को यूज करना है। फिर उस ककड़ी को आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर का जार। उस जार में हम डालेंगे खीरा मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीना के कुछ पत्ते। इसके साथ आधा कप पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। जब तक ये मिश्रण एकदम स्मूथ ना हो तब तक हमें इसे मिक्सर में पीसना है। इसका स्मूथ पेस्ट बनने के बाद क्या करें? तो भाई अब हमें इसे छानना है। इसके लिए हमें चाहिए एक छलनी। उस छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम छान लेते हैं। ऐसा करने से खीरा मीन्स क्यूकम्बर के रेशे अलग हो जाएंगे। फिर उस छाने हुए स्मूथ जूस को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब उसमें मिलाना है नींबू का रस, शक्कर और थोड़ा सा नमक। फिर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लीजिए 2 सर्विंग ग्लास। फिर हमेशा वाला क्रिस्टल डेकोरेशन मीन्स नमक और शक्कर वाला डेकोरेशन करना है। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा पानी लगाइए। उसके बाद एक छोटी प्लेट में हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच नमक। इस प्लेट में नमक और शक्कर को मिक्स करना है। अब उन गीले किनारों वाले ग्लास को उस प्लेट में पलट दीजिए। आई मीन टू से उन्हें अपसाइड डाउन करके उस प्लेट में रखिए। फिर एकदम आराम से उन्हें सीधे रखिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद क्या करना है तो जनाब अब सुनिए आगे। अब बड़ी नजाकत से उन ग्लास में हम डालेंगे क्यूकम्बर लाइम का जूस। आप चाहे तो सबसे पहले बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए और फिर क्यूकम्बर लाइम का जूस डालिए। वैसे मुझे पर्सनली विदाउट आइस वाले मॉकटेल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब उस क्यूकम्बर लाइम जूस के ऊपर हमें डालना है स्प्राइट। फिर इस मिश्रण को 1 चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। अब बारी आती है फाइनल टच की। उस ग्लास के किनारों पर हम लगाएंगे नींबू की पतली स्लाइस और उसके साथ रिफ्रेशिंग पुदीना की एक सुंदर सी पत्ती। अब इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की सुंदर छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चुटकी भर ग्रेटेड अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट जिंजर भी इसका टेस्ट एकदम कमाल का ही होगा। इस तरह हमारा क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल हो गया है एकदम तैयार। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट अपने किचन में जाइए और फटाफट से क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को बनाइए। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है राहत वाला मॉकटेल। झुलसती सी गर्मी से जब पानी हो राहत और ककड़ी को खाने की मुझे हो चाहत, तब क्यों जाए हम कोई रेस्टोरेंट या होटल, घर में ही बनाएंगे टेस्टी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल। गर्मी से बेहाल होकर आए जब पसीना, तब ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मांगे कोई हसीना, उस वक्त जरूर पेश कीजिए अनोखा सा नगीना जिसमें है खीरा और रिफ्रेशिंग पुदीना। खीरा और पुदीना संग डालो थोड़ा स्प्राइट, इसको सिप करके एक्सप्रेशन दो ब्राइट। इसका टेस्ट निखारने डालो थोड़ी सी शक्कर,
क्यूकम्बर पुदीना मॉकटेल गर्मी को देगा टक्कर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वाले कल्चर का ये मेल मींस किचन में कलाकारी दिखाने वाला खेल। आपकी उपस्थिति से स्वाद का जायका में आई है बहार। सोमवार और शुक्रवार के इंतजार में भारतीय सीमा हुई बेकरार। इस शो पर बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी खाना। आगे बात होगी और पहले सुनिए अगला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। अलियू मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी, हवा से अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

दूर कहीं अमेज़न के काले और घने जंगलों में देर रात जब नुकीले दांत वाला डरावना जीव न्यूक्लिया अपने दैत्याकार भयंकर और बेस हेवी बीट्स बजाता है तो मानो पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। जब जंगल के सारे जानवर डर कर चुप हो जाते हैं तब उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है।

आरएन एनडी एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आरजे 90 एफएम के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90 एफएम का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे।

ताजे और पके हुए आम दो, इलायची पाउडर आधा चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद छेना मींस ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंद कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मींस कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ्ड लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहाहा, क्या बात भाई, मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होममेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM मीन्स योर ओन रेडियो, स्वाद का जायका निभाती हूँ फ्रॉम अवर स्टूडियो। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नींबू 1, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची। फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी, इसलिए बी केयरफुल। हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुफ्त उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात! फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुफ्त उठाइए।
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़।

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम लेके आए एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो काफी साधारण सी लगेगी, पर इस कहानी के मायने काफी ज्यादा है। ये कहानी है गांव के एक छोटे से लड़के की, जिसको सारे लोग ताने दिया करते थे, परेशान किया करते थे, बेरोजगार कहा करते थे, और अचानक से कुछ ही समय में वो बहुत ज्यादा फेमस और पैसे वाला हो गया। तो वो फेमस और पैसे वाला कैसे हो गया, तो चलिए सुनते हैं गांव का रियल स्टार। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए डिग्री नहीं, बस एक 30 सेकंड का आइडिया ही काफी होता है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर खेरा में रहता था राघव, 24 साल का एक सीधा साधा लड़का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी रह गई थी, पापा के पास 2 बीघा जमीन थी, मम्मी घर संभालती थी। रोज सुबह वो खेतों में मदद करता, लेकिन शाम होते ही छत पर बैठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता। गांव वाले उसे एक ही नाम से बुलाते थे, निकम्मा। चाय की दुकान पर हर रोज वही बातें होती, अरे राघव नौकरी मिली, फोन चला के पेट भर गया क्या, पड़ोस के मोहन को देखो दुबई चला गया है। ये सारे ताने सुनकर राघव बस मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाता। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव को दुनिया को दिखाना है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम था रियल विलेज राघव, और उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर थे सिर्फ 8। उसमें भी 3 कजिन, 2 स्कूल फ्रेंड्स और बाकी एक फेक अकाउंट। एक दिन उसकी छोटी बहन गुड़िया बोली, भाई तू हमेशा दूसरों की रील्स देखता है, कभी अपनी भी बना लिया कर। राघव हंसा, हमारे गांव में क्या खास है गुड़िया। गुड़िया ने सीधा जवाब दे दिया, जो शहर वालों के पास नहीं है। और ये लाइन राघव के दिमाग में घर कर गई। अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज की पहली रोशनी खेतों पर गिर रही थी, डिव ड्रॉप्स चमक रहे थे, सब लोग नॉर्मल वीडियो बनाते थे। राघव ने कुछ अलग किया, उसने फोन को मिट्टी के अंदर आधा दबा दिया, कैमरा सिर्फ ऊपर की तरफ। फिर वो नंगे पैर खेतों में दौड़ता हुआ कैमरा के ऊपर से गुजरा। वीडियो का एंगल ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद इंसान को देख रही हो। 30 सेकंड बस। कैप्शन लिखा था, POV, जब मिट्टी अपने बेटे को देखती है। अपलोड, और फोन रख दिया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये उसकी जिंदगी का पहला अद्भुत चमत्कार यानी मिरेकल बनने वाला था। पहले 10 मिनट में मात्र 17 व्यूज आए, अगले 1 घंटे बाद वो 230 हो चुके थे, रात तक वो 12,000 व्यूज तक पहुंच चुके थे। राघव को लगा चलिए तुक्का लग गया, और जब वो सो गया और सो के जब वो अगले दिन उठा तो सुबह उठते ही नोटिफिकेशन रुक ही नहीं रही थी, व्यूज हो चुके थे 2.8 लाख। कमेंट्स भर गए, ये एंगल कैसे शूट किया, गूज़बम्प्स, इंडिया का मोस्ट क्रिएटिव विलेज क्रिएटर। राघव का हाथ कांप रहा था, गुड़िया चीख पड़ी, भाई तेरा वीडियो वायरल हो गया। पापा को कुछ समझ नहीं आया, वायरल मतलब बुखार का, पापा ने पूछा, सब हंस पड़े। राघव ने डिसाइड किया हर रील में एक नया एंगल होगा, ना डांस ना लिप सिंक्रोनाइजेशन, सिर्फ क्रिएटिविटी। उसकी नेक्स्ट रील, कैमरा को बैलगाड़ी के पहिए पर बांध दिया, मटके के अंदर फोन रखकर पानी भरने का POV, हल के नीचे कैमरा लगा दिया, पतंग के साथ लाइट वेट फोन माउंट बना दिया। हर वीडियो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसने कभी फेक लग्जरी नहीं दिखाई, सिर्फ और सिर्फ असली गांव दिखाया, असली इमोशंस। और क्या, जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उतनी उसकी जलन भी बढ़ने गई लोगों में। पड़ोसी श्यामलाल बोला, फोन घुमा के हीरो बन रहा है। दूसरा बोला, कल दो दिन में भूल जाएंगे सब। एक दिन पंचायत के बाहर किसी ने उसके मुंह पर कहा, इंस्टाग्राम से कोई अमीर नहीं होता। ये बात उसे चुभी। उस रात वो बहुत रोया। मम्मी उसके पास बैठ गई, बेटा लोग तब तक हंसते हैं जब तक भगवान उन्हें जवाब नहीं देता। राघव चुप हो गया। उसने डिसाइड किया, आप जवाब जुबान नहीं मेरा काम देगा। और उसने डिसाइड कर लिया कि अब रील्स बनती रहेगी और किसी ना किसी जरिए से पैसे कमाने पड़ेंगे। राघव बस वीडियो नहीं बना रहा था, वो ऑब्जर्व भी कर रहा था। उसने नोटबुक बनाई, उसमें लिखा, फर्स्ट टू सेकेंड्स हुक, नेचुरल साउंड, नो लाउड म्यूजिक, स्टोरी इन 25 सेकेंड, लास्ट फ्रेम इमोशनल। ये उसके वीडियो के 5 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। हर वायरल रील के पीछे प्लानिंग होती थी। गांव वाले सोचते बस फोन चलाता है, लेकिन सच वो रोज 6 घंटे एडिटिंग सीख रहा था, फ्री एप्स पर, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पर, और अनलिमिटेड मेहनत कर रहा था। और क्या, धीरे धीरे जो फॉलोवर्स बढ़ते गए, वो 3 महीने बाद इंस्टाग्राम लाइव पर फॉलोवर क्रॉस हो चुके थे 1 मिलियन। पूरा गांव देख रहा था। जो चाय वाला पहले बोलता था निकम्मा, अब वही बोला, राघव बेटा एक सेल्फी मिलेगी। राघव सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने किसी का मजाक नहीं बनाया, क्योंकि उसे याद था ताने ही उसकी गाड़ी का पेट्रोल है, जो मिलते जाते हैं और उसकी गाड़ी दौड़ती जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से गांव के लोगों ने राघव को इतने ताने मारे, न जाने निकम्मा और क्या क्या बोला, पर वो था आखिर में पढ़ा लिखा और क्रिएटिव। उसकी क्रिएटिविटी ने उसे रातों रात इतना बड़ा स्टार बना दिया कि 3 महीने के भीतर उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके थे और उसकी लगभग सारी वीडियोस वायरल जा रही थी। लेकिन वो जैसे जैसे फेमस हो रहा था, वैसे वैसे लोगों की जलन भी बढ़ती जा रही थी। तो आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा? क्या राघव की ये जो पॉपुलैरिटी है, ये वक्त के साथ साथ धीमी पड़ जाएगी, या राघव अपने सपनों के लिए एक और बहुत लंबी छलांग लगाएगा? ये हम और आप सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक और सदाबहार गाना।
1: एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चल।

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी शब्दे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे राघव की कहानी, गांव का रिश्ता। तो राघव के अब 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। वायरल होना मुश्किल है, लेकिन वायरल रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सुबह 9 बजे थे, राघव खेतों में पानी डाल रहा था, तभी अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, इज दिस राघव? राघव, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। हम एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। राघव को लगा कोई ब्रांड है। ब्रांड ने बोला, 1 30 सेकंड की रील के लगभग 1,20,000 रुपए हम दे सकते हैं। और राघव ने फोन कट कर दिया। शाम को राघव को एक ईमेल आया। पापा ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? राघव ने बोला, एक ब्रांड आया है, अब बैंक डिटेल्स मांग रहा है, एडवांस पेमेंट करनी है, तो वही डिटेल्स भेज रहा हूं। राघव ने डिटेल्स भेज दी और एडवांस पेमेंट भी आ गया। पापा ने पूछा, इतने पैसे किस बात के? राघव हंसा और कहा, बस गांव दिखाने के इतने पैसे मिल रहे पापा। अब क्या, राघव की जो शोहरत थी और दौलत दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब उसने और नए नए आइडियाज लाने शुरू कर दिए। कैमरे को चूल्हे के अंदर रखकर रोटी का पीओवी, शुगर केन के बीच से ट्रांजिशन, बारिश की बूंद के थ्रू फोकस शॉट, ड्रोन की जगह पतंग और बंबू से एरियल व्यू। लोग कमेंट्स करने लगे थे, ये हॉलीवुड लेवल की क्रिएटिविटी है। उसकी रील सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गांव की डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। और अब धीरे धीरे धीरे धीरे 6 महीने के अंदर उसके फॉलोअर्स 5 मिलियन हो चुके थे। गांव में वही लोग जो उसे निकम्मा कहते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे थे। राघव बेटा, इसको भी सिखा दे। राघव ने किसी को मना नहीं किया। उसने पंचायत हॉल में फ्री वर्कशॉप रखी। टाइटल था, फोन से रोजगार। 50 लड़के लड़कियां आई। उसने सबसे पहली लाइन बोली, कंटेंट बनाने से पहले कैरेक्टर बनाओ। सब चुप हो गया। और उसकी फिर वर्कशॉप जो शुरू हुई, राघव ने धीरे धीरे धीरे उन 50 बच्चे बच्चियों को इतने अच्छे तरीके से वर्कशॉप दी कि फिर राघव जैसे और 50 लोग उस गांव में शायद बनने वाले थे। अब धीरे धीरे राघव की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और 1 साल के अंदर ब्रांड डील्स, यूट्यूब रेवेन्यू, इंस्टाग्राम बोनसेस, टूरिज्म कैंपेन्स, ना जाने क्या क्या क्या क्या क्या क्या। राघव से इतनी शोहरत, इतनी दौलत अब संभाली नहीं जा रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए। और उसने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम रखा मिट्टी स्टोरीज मीडिया, यानी जो मिट्टी होती है गांव की, उसके ऊपर उसने नाम रखा मिट्टी स्टोरीज मीडिया। उस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था 2.4 करोड़। सबसे पहला काम, पापा का पुराना कच्चा घर तोड़कर उसी जगह एक सुंदर पक्का घर बनाना। और ये बात राघव ने जैसे अपने घर पर कही, मम्मी ने एक कंडीशन रखी, तू चाहे घर बना या बंगला बना या महल बना राघव, लेकिन वो पुराना नीम का पेड़ नहीं कटेगा। और राघव ने उसी पेड़ को घर का सेंटर बना दिया। अब धीरे धीरे धीरे राघव आसमान छू रहा था। और उतने में ही मुंबई का एक बड़ा इन्फ्लुएंसर करण उसकी वीडियोस देख रहा था। उसने राघव के एंगल्स कॉपी करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उसके फॉलोवर्स ज्यादा थे, लोगों ने उल्टा राघव को ही कॉपी कैट बोल दिया। कमेंट्स आने लगे, ये तो करण वाला आइडिया है। राघव टूट गया। उसकी 3 रील्स फ्लॉप हो गई। पहली बार उसने कैमरा बंद किया अपनी लाइफ में, जो खुद एक इतना अच्छा क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर था। उसकी वीडियोस को देखकर एक उससे बड़ा कंटेंट क्रिएटर कॉपी कर रहा था और लोगों को लग रहा था कि ये राघव कॉपीकैट है ना कि करण। लेकिन जानते हैं ना दोस्तों, सच जो है वो छुपाए नहीं छुपता। गांव के 82 साल के दादाजी ने उससे खेतों में बुलाया, बेटा असली बीज को कभी नकली पौधा रिप्लेस नहीं कर सकता। लोग स्टाइल कॉपी कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी सोच नहीं। ये लाइन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी। उसने डिसाइड किया आप सिर्फ विजुअल्स नहीं होंगे, इमोशंस के साथ स्टोरी टेलिंग भी होगी। और उसने अपने वीडियोस को, अपने 30 सेकंड की रील्स को इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाना शुरू किया कि उसमें सिर्फ गांव के शॉट्स नहीं होकर बल्कि एक स्टोरी टेलिंग होने लगी। पहला वीडियो बनाया उसने एक किसान की पॉकेट, 30 सेकंड की रील में बस उसने पॉइंट जो जॉट डाउन किया उसमें था पापा की फटी हुई जेब, उसमें रखे 10 रुपए के पुराने नोट और लास्ट शॉट वही हाथ राघव का अवार्ड पकड़े हुए। वॉइस ओवर, जेब कभी अमीर नहीं थी, दुआ हमेशा थी। 48 घंटे बीत चुके थे, इसके पहले 3 वीडियोस फ्लॉप हो चुकी थी लेकिन इस वीडियो ने जो इंस्टाग्राम पर तहलका मचाया वो अब तक के राघव के जिंदगी का सबसे बड़ा तहलका था। 48 घंटों के भीतर में 112 मिलियन व्यूज आ चुके थे उस वीडियो पर। सेलिब्रिटीज ने शेयर किया था, न्यूज चैनल्स ने इंटरव्यू लिया और दुनिया ने पहली बार राघव को सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं एक स्टोरी टेलर कहा, राघव द स्टोरी टेलर। तो दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो एक साल पहले तक निकम्मा था, जिसे लोग निकम्मा कहते थे, जिसके पास कोई काम नहीं था, जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके घर बैठकर सिर्फ फोन स्क्रॉल करता था, आज उसी को दुनिया स्टोरी टेलर कहने लगी थी। गांव में माँ बाप अपने बच्चों को लाकर उसके पास भेजते थे और राघव से कहते थे, राघव हमारे बच्चों को भी वीडियोस बनाना सिखाओ। तो एक निकम्मा कैसे अब दूसरों को रोजगार देने लगा, लोगों को सिखाने लगा। ये जर्नी काफी ब्यूटीफुल थी लेकिन जर्नी अगर इतने आसानी से बन जाए तो वो जर्नी किस बात की। तो इस जर्नी में अब एक ट्विस्ट एंड टर्न और बाकी है, वो हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों का।
1: सशक्त बक्से में बंद, बड़े बड़े लगा उस पे जंग और कंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद।

0: आते हैं, जब कैरेजुअल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक नया गेमिंग चैनल खोलूंगा।
1: अच्छा, याद से खोल लियो। तेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है उस पे। अब ये एग्जाम एग्जाम की बकचोदी छोड़ और सही चीज पे दिमाग लगा। खत्म हो गया।
2: पीछे मत देखना, पीछे मत मुड़ना, चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा, जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझमें थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हमने देखा कि कैसे राघव की एक वीडियो उसकी जिंदगी की अभी सबसे बड़ी वायरल वीडियो बन चुकी थी। 48 घंटों के भीतर उसमें उसे 112 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। अब आगे क्या होगा तो चलिए देखते हैं। वो कहते हैं ना, जब नीयत साफ हो तो शोहरत सिर्फ इंसान को नहीं उसकी मिट्टी को भी मिलती है। राघव की रील्स अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जापान, ब्राजील और यूरोप तक पहुंच रही थी। एक दिन इंस्टाग्राम का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50 मिलियन फॉलोअर्स। मीडिया ने उसे इंडिया विलेज स्टोरी टेलर नाम दिया था, लेकिन राघव हर बायो में सिर्फ एक ही लाइन लिखा था लेकिन राघव के बायो में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, रामपुर खेरा उत्तर प्रदेश। उसके लिए उसका गांव ही उसकी पहचान था, उसके लिए उसका गांव ही उसका सब कुछ था। राघव ने इतना पैसा कमाया, इतनी शोहरत कमाई, लेकिन उसने कभी लैम्बोर्गिनी या कोई लग्जरियस कार नहीं खरीदी। वो अपनी जिंदगी को सरल ही रखता गया। उसने 3 काम किए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, गांव के स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम दिए, हर घर तक फ्री वाईफाई लगवाया और 40 बेरोजगार युवाओं को कैमरा और एडिटिंग की ट्रेनिंग दी। उसका मानना था, अगर मैं अकेला सक्सेसफुल हो गया तो ये मेरी जीत नहीं, अगर मेरा गांव बदल जाएगा तब मेरी असली जीत होगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी सोच थी राघव की। वो अकेला सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता था, वो चाहता था उसके साथ उसका पूरा गांव उसी की तरह तरक्की करे। और उसने उसी रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए और आगे बढ़ता रहा। जो पंचायत राघव का मजाक बनाती थी, अब वही पंचायत उसका स्टेज सजाया करती है। बैनर पर लिखा था, गांव का गौरव राघव। सरपंच ने माइक पकड़कर बोला, हमने इस लड़के को कभी समझा ही नहीं, आज इसने हमारे गांव का नाम दुनिया तक पहुंचा दिया। इसे हम हमेशा निकम्मा, बेरोजगार, न जाने क्या क्या कहते रहे, पर इसने हमेशा हमारे सारे तानों को, सारी बातों को मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कभी अपने मन पर नहीं लिया बल्कि अपने काम पर फोकस करता रहा। और देखिए, आज राघव की वजह से हमारा गांव दुनिया में फेमस हो चुका है। पूरा गांव खड़ा हो गया। सबसे पीछे खड़े थे श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो स्टेज पर आया और बोला, बेटा माफ कर दे, मैंने तुझे सबसे ज्यादा ताने दिए। राघव ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया, चाचा अगर आप ताने नहीं देते तो शायद मैं इतनी मेहनत भी नहीं करता। अब राघव अपने वीडियोस बनाने के साथ साथ अपनी वर्कशॉप भी रखने लगा और वर्कशॉप का नाम था 30 सेकेंड्स अकेडमी। उसका मिशन था हर गांव से एक कंटेंट क्रिएटर जरूर बने। एक साल में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया से अर्निंग शुरू कर दी। किसी ने पोएट्री दिखाई, किसी ने फार्मिंग, किसी ने फोक म्यूजिक। रामपुर खेरा एक क्रिएटर विलेज बन चुका था। और धीरे धीरे इतनी सारी चीजें रामपुर खेरा में हो गई कि शायद जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही ना की। एक राघव जो चिंगारी थी अब पूरे रामपुर खेरा में आग बन चुका था और उसी की आग की छोटी छोटी छोटी छोटी ज्योत अलग अलग अलग अलग तरीके से पूरे गांव में फैल चुकी थी। कोई पोएट्री के जरिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा था तो कोई फार्मिंग दिखा रहा था, कोई फोक म्यूजिक और ना जाने क्या क्या अनगिनत टॉपिक्स पर। कितने सारे बच्चे अब इंस्टाग्राम से पैसा कमाना शुरू कर चुके थे। वो गांव जिसे लोग शायद खेतीबाड़ी के लिए जानते थे, अब वो गांव एक क्रिएटिव गांव बन चुका था। एक ऐसा इंस्टाग्राम विलेज जहां पे गांव मजदूर नहीं, किसान नहीं, बल्कि कंटेंट क्रिएटर पैदा कर रहा था। और लगभग आज पूरे 5 साल हो गए राघव की इस जर्नी को। राघव उसी खेत में खड़ा है जहां उसने पहला वायरल वीडियो शूट किया था।
उसने फिर से फोन को मिट्टी में आधा दबा दिया। क्या मेरा ऑन किया? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, 5 साल पहले लोग कहते थे कि फोन से पेट नहीं भरता, आज इसी फोन के हजारों घरों में रोटी पहुंचाई जाती है। उसने मिट्टी उठाकर माथा चूमा, स्क्रीन ब्लैक हुई। कैप्शन था, कभी अपनी शुरुआत

शर्माना मत, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था दोस्तों, टैलेंट तब चमकता है जब कंसिस्टेंसी, ओरिजिनलिटी और रूट्स के साथ साथ ईमानदारी जुड़ी है। तो दोस्तों, हमने सुनी राघव द विलेज विल स्टार की कहानी, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जिसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस होगा। तो तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त RJ शब्बीर अभी आपसे कहता हूँ अलविदा।

शहर 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे। आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12 और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मीन्स उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर

गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है।

लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यम्मी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहां पर मैं बात कर रही हूं करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए

सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों, सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा। ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार। और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांट कर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढो पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन कशला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो।
स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम, दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट, दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानी के गुलशन। आज की कहानी है बहुत ही ज्यादा थ्रिलर से भरी हुई।

कहानी है एक किडनैपिंग की। एक किडनैपिंग जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें अगर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो फिर आप कहानी नहीं सुनोगे ना। इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी और इस कहानी के इतने मजे लेने कि शायद जैसे एक मूवी चलती है ना 3 घंटे की, ठीक उसी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है गुमशुदा। मुंबई की बारिश का अपना अलग ही मूड होता है। कभी लगता है कि शहर को साफ कर रही है और कभी लगता है कि शहर को डुबा रही है। 22 जुलाई रात के 9:47 हो चुके थे। अंधेरी ईस्ट एक 1 BHK फ्लैट में अयान खान अपनी कॉफी के साथ लैपटॉप पर क्राइम आर्टिकल कंप्लीट कर रहा था। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ऐसा रिपोर्टर जो पुलिस प्रेस रिलीज से ज्यादा गलियों के सच पर भरोसा करता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांसें सुनाई दी, फिर एक छोटी सी बच्ची की कांपती हुई आवाज, पापा मुझे घर जाना है प्लीज। अयान तुरंत सीधा बैठ गया। बेटा कौन हो तुम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? लेकिन जवाब देने से पहले ही कॉल कट हो गया। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज बच गई। उसने तुरंत नंबर रिडायल किया। द नंबर यू आर डायलिंग इट स्विच ऑफ। 1 मिनट बाद व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है। एक फोटो, 8 साल की एक लड़की, हाथ कुर्सी से बंधे हुए, आंखों पर काला कपड़ा, पीछे नमी वाली पुरानी दीवार और नीचे सिर्फ एक लाइन, 24 आवर्स पुलिस गई तो लाश मिलेगी। अयान की उंगलियां ठंडी पड़ गई। ये प्रैंक नहीं, एक ऐसी चीज थी जो शायद किसी का भी दिल दहला सकती थी। टीवी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चल रही थी। एंकर की आवाज आई, मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन राजीव मल्होत्रा की 8 साल की बेटी अन्या मल्होत्रा स्कूल से लापता हो गई है। स्क्रीन पर जो फोटो दिखी थी ये वही बच्ची थी। अयान ने फोन और टीवी दोनों को एक साथ देखा। उसके पास वो फोटो कैसे आई? किडनैपर ने उसे ये क्यों कांटेक्ट किया? पुलिस को क्यों नहीं? उसने तुरंत अपनी एडिटर मीरा को कॉल किया। मीरा, मेरे पास आन्या का किडनैपिंग प्रूफ है। दूसरी तरफ 3 सेकंड्स की खामोशी। पुलिस को कॉल करो। मैसेज में क्लियरली लिखा है पुलिस गई तो मीरा बच्ची नहीं बच पाएगी। मीरा ने बीच में रोका, अयान कभी कभी जर्नलिस्ट होने से पहले इंसान बनना पड़ता है, और उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन अयान का इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा था। किडनैपर उसे कुछ और दिखाना चाहता था। अयान पूरी रात अपने बेड पर इधर से उधर करवटे बदल रहा था, फोटो देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि आखिर किडनैपर ने उसे ही क्यों कांटेक्ट किया। अगली सुबह आन्या के स्कूल के बाहर मीडिया का समंदर था। पुलिस बैरिकेड्स थी, कैमरास थे, रोते हुए पेरेंट्स। अयान प्रेस कार्ड दिखाकर अंदर गया। गेट के सीसीटीवी रूम में उसका पुराना दोस्त मिला, इंस्पेक्टर कबीर। कबीर ने उसे देखते ही खाया, इस बार स्टोरी मत बनाना, एक बच्चे की जान का सवाल है। अयान ने फोन निकाला और अपने दोस्त कबीर को फोटो दिखाई। फोटो देखते ही कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अयान ने कबीर को सब सच बता दिया। कबीर ने बिना देर किए फोन फॉरेंसिक टीम को फोन लगाया और कहा, अब तुम कहीं और नहीं जाओ,
थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज प्ले हुई। 3:12 पर आन्या स्कूल के गेट से बाहर निकली। नॉर्मली ड्राइवर उसे पिकअप करता था, लेकिन उस दिन एक व्हाइट स्कूल वैन उसके सामने रुकती है। ड्राइवर यूनिफॉर्म में था, वैन पर स्कूल का स्टिकर भी लगा था। आन्या बिना डरे अंदर बैठ गई। 3 सेकेंड्स वैन गायब। कबीर धीरे से बोला, स्टिकर फेक था। प्रोफेशनल किडनैपिंग हुई है प्लानिंग के साथ। अब सारी चीजें जो है आन्या के पिताजी के पास। राजीव मल्होत्रा का बंगलो किसी होटल से कम नहीं था, लेकिन उस दिन हर रूम में सिर्फ एक ही चीज थी, खौफ। आन्या की मां नैना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो पूरी रात रो रही थी। राजीव उसे बार बार एक ही बात बोल रहा था कि तुम डरो मत, मैं किडनैपर को बोल दूंगा, पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरी बेटी वापस मुझे दे दो। तभी घर के फोन पर एक रिंग बजती है और सब चुप हो जाते हैं। राजीव ने स्पीकर ऑन किया। एक डिसऑर्टेड आवाज, 20 करोड़ कैश 24 घंटे के अंदर। राजीव बोला, मैं दे दूंगा। किडनैपर हंसा, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारा दर्द इंपॉर्टेंट है। इतना कहकर कॉल कट हो गया। कबीर ने धीरे से कहा, सर ये जो किडनैपिंग हुई है ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ पर्सनल मोटिव है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। फोटो के बैकग्राउंड में एक छोटा सा बोर्ड ब्लर था। इमेज इनांस हुई, सिर्फ 2 लेटर्स दिखे, आर के। कबीर बोला, ये आर के वेयरहाउस है शायद। अयान तुरंत खड़ा हुआ। रे रोड में आर के कोल्ड स्टोरेज था, 5 साल पहले वो बंद हुआ था। कबीर उसकी तरफ देखने लगा और कहा, चलो जल्दी चलो। सब निकल पड़े रे रोड। समंदर के पास एक पुराना गोडाउन, दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा, पानी टपकने की आवाज। टॉर्च की रोशनी में जमीन पर छोटे छोटे पिंक कैरियन के टुकड़े पड़े थे। कबीर झुक गया। ये बच्ची यहीं पर थी। आयान को एक दीवार पर कुछ लिखा दिखा, क्रूक हैंडराइटिंग, पापा सेव मी। उसके नीचे एक टेडी बियर, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी, सिर्फ एक रिकॉर्डर था। कबीर ने उस रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। आन्या की आवाज, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर अचानक से एक आदमी की आवाज आई, आयान, अगर हीरो बनने की कोशिश की तो अगला रिकॉर्डर नहीं सिरे लाश मिलेगी। रिकॉर्डर बंद। कबीर ने धीरे से आयान की तरफ देखा।

तो इससे तो साफ पता चलता है ये किडनैपर कोई बाहर का नहीं, ये कुछ पर्सनल था। लेकिन क्या पर्सनल था ये आप और मैं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक।

0: a time, there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most.
1: Hello and welcome to Acharya 90 FM. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में. आन्या किडनैप हो चुकी है और कबीर और अयान उस लोकेशन पे पहुंचे थे जहां आन्या को किडनैप करके रखा था. लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही किडनैपर आन्या को वहां से लेकर फरार हो गया और वहां पर एक रिकॉर्डर मिला जिसमें ये कहा था कबीर अयान हीरो बनने की कोशिश मत करो. तो इससे पता चलता है कि जो किडनैपर है वो राजीव और अयान दोनों को जानता है और उनकी हर चाल को भी समझता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. आर के वेयरहाउस के बाहर निकलते ही कबीर ने पूरा एरिया सील कर दिया. मीडिया को एक शब्द भी नहीं पता चलना चाहिए, उसने कमांड दिया. अयान रिकॉर्डर को बार बार सुन रहा था, हर बार उस डिसऑर्डर्ड आवाज में एक अजीब सी फैमिलियरिटी थी महसूस हो रही थी. रात के 1:18 हो चुके थे, उसके फोन पर फिर नोटिफिकेशन आया. इस बार वीडियो था, वीडियो ऑन हुआ. आन्या एक छोटे से कमरे में बैठी थी, उसके सामने एक बर्थडे केक रखा था लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे. कैमरे के पीछे से वही आदमी बोला, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस. अयान का दिल रुक सा गया. आज आन्या का बर्थडे था. फिर कैमरा सीधा अयान की तरफ घुमा जैसे वो देख रहा हो. जर्नलिस्ट साहब, 2019 याद है?
2: वीडियो खत्म.
1: अयान के हाथ कांपने लगे. 2019, वो साल जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी. 3 पहले अयान ने एक एक्सपोज किया था. रुद्रा बायोटेक नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी बच्चों के मेडिसिन में फेक क्लिनिकल डेटा यूज कर रही थी. रिपोर्ट पब्लिश हुई, कंपनी बंद हुई, सीईओ अरेस्ट हुआ. लेकिन एक आदमी पुलिस इनकाउंटर में मारा गया. बताया गया उसका नाम था राघव खुराना, इन्वेस्टिगेशन का मास्टरमाइंड. कबीर ने धीरे से बोला, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से राघव डेड है. अयान ने हमें सर हिला के मंजूरी दी और कहा, लेकिन नहीं, अगर ये वो नहीं तो फिर वो मर चुके हैं तो ये जिंदा कौन है? पुलिस स्टेशन में पैनिक मच गया. दूसरी कंप्लेंट फिर से आई और अब जो गुमशुदा था वो था 10 का विवान. सेम पैटर्न, फेक स्कूल व्हीकल, सेम टाइमिंग. कबीर ने टेबल पर मैप फैलाया, दोनों स्कूल एक ही रेडियस में थे. आयान ने मार्कर उठाया और दोनों लोकेशंस को ज्वाइन किया. बीच में एक अबॉन्डेड मेट्रो टनल आता है, ये वही रूट है, अयान बोला. कबीर ने तुरंत स्पेशल टीम भेजी लेकिन टनल खाली निकला. सिर्फ एक चीज मिली, एक चेस बोर्ड, और उस पर लिखा था, ब्लैक किंग गायब. पीछे मार्कर से लिखा था, गेम अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या. सुबह 6 फॉरेंसिक लैब से कॉल आया, वेयरहाउस के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए. सब शॉक हो गए, प्रिंट्स किसी क्रिमिनल के नहीं थे, राजीव मल्होत्रा के पर्सनल सिक्योरिटी हेड महेश यादव के थे.

महेश को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया। इंटरोगेशन रूम में कबीर चिल्लाया, आन्या कहां है? महेश रोता रहा और कहता रहा, मैंने सिर्फ गेट खोला था, मुझे लगा फेक किडनैपिंग है, मुझे 50 लाख दिए गए थे। किसने? महेश ने धीरे से बोला, राघव। रूम में सन्नाटा छा गया। महेश ने एक और नाम लिया, अंदर कोई और भी है। कौन? महेश जवाब देने ही वाला था कि ढाम, बाहर से स्नाइपर की गोली खिड़की को तोड़ते हुए उसके सीने में लगी। महेश वही मर गया। किलर ने अपना सबसे बड़ा विटनेस खत्म कर दिया। अब पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था, जो उनका इकलौता गवाह था उसे भी गोली लग चुकी थी और वो मर चुका था। सारी फ्रस्ट्रेशन को लेकर जब अयान अपने घर लौट रहा था, उसकी घर की लिफ्ट खुली, अंदर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था, उस पर लिखा था ओपन एट होम। कबीर ने मना किया। कबीर ने कहा कुछ भी हो सकता है इसमें। कबीर ने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया, बॉम्ब स्क्वाड ने बॉक्स खोला, अंदर बॉम्ब नहीं था, एक पुरानी फोटोग्राफ थी, 12 साल पुरानी फोटोग्राफ। फोटो में अयान, उसकी छोटी बहन सारा और उसके पेरेंट्स थे। सारा जो 14 साल की उम्र में मिस्टीरियस मिसिंग हुई, कभी मिस्टीरियसली मिसिंग हुई और कभी मिली ही नहीं। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उस दिन भी तुम उसे बचा नहीं पाए थे और अब भी तुम दोनों बच्चों को बचा नहीं पाओगे। अयान टूट गया। कबीर समझ गया ये किडनैपिंग सिर्फ राजीव के खिलाफ बदला नहीं, ये अयान के खिलाफ पर्सनल वॉर भी है। और असली सवाल अब ये था, क्या सारा का डिसअपीयरेंस भी राघव से जुड़ा हुआ था या फिर इस कहानी का, इस किडनैपिंग का एक और ही अलग एंगल है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये जो किडनैपर था ये कोई पर्सनल पहचान वाला ही था, जिसे शायद कभी ना कभी अयान के वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, और ये किडनैपर उसी पर्सनल चीजों को लेकर धीरे धीरे लोगों को किडनैप कर रहा था। दो लोगों तो वो किडनैप कर चुका था, और अब जिस तरीके से उसने अयान की सिस्टर के बारे में बताया कि उसकी सिस्टर जैसे मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई थी, क्या 12 साल पहले की कहानी अब फिर से आके जुड़ेगी या फिर कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेगी, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो हम सुनेंगे कहानी का आखिरी हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों का उल्लेख।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के बिल्लक में। हम सुन रहे थे कि किस तरीके से किडनैपर ने अब अयान को, कबीर को, सबको कंफ्यूज कर दिया है। उसने एक ऐसा सच बताया जो 12 साल पहले सिर्फ कबीर, अयान ये दोनों ही जानते थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये जो किडनैपर है ये कोई बहुत करीबी है और ये कोई पर्सनल बदला ही ले रहा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा कि आगे कहानी में क्या होगा। सुबह 8:10 हो चुके थे। क्राइम ब्रांच की फोरेंसिक टीम ने गिफ्ट बॉक्स के एक हिडन मेमोरी कार्ड रिकवर किया। उसमें 12 साल पुराना सीसीटीवी फुटेज था। अयान की 14 साल की बहन सारा को किसी ने फोर्सफुली नहीं उठाया था, वो खुद एक ब्लैक एसयूवी में बैठी थी। ड्राइवर का चेहरा ब्लर था लेकिन उसकी वॉच पर आरके का लोगो नजर आ रहा था। कबीर धीरे से बोला, राघव तब से तुम्हारी फैमिली को देख रहा था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सालों तक खुद को सारा की मौत का जिम्मेदार माना था। किडनैपर का फाइनल कॉल आया 12 घंटे, डॉक नंबर 17। अकेले आना वरना आन्या और विवान दोनों मरे मिलेंगे। पुलिस ट्रैकर लगाना चाहती थी लेकिन अयान ने एक प्लान बनाया। कबीर और एटीएस टीम समंदर के रास्ते सीक्रेटली वेयरहाउस को सराउंड करेगी। अयान अकेले अंदर जाएगा और ये प्लान ठीक अब उसी तरह एग्जीक्यूट होने लगा। रात के 8 बजे थे। पुराने मुंबई पोर्ट का वेयरहाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा खुला, अंदर हजारों कंटेनर्स, बीच में एक चेयर और उस पर आन्या और विवान बंधे हुए थे और सामने खड़ा था राघव खुराना, वही आदमी जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी। उसने मास्क उतारा और मुस्कुराया। वेलकम बैक जर्नलिस्ट, अयान ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? राघव हंसा, सारा ने मेरी कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस देखा था, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर अयान के अंदर खून खौल गया और उसका मन हुआ कि वो तुरंत ही राघव को खत्म कर दे। लेकिन राघव जो था वो भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था अंदर। राघव ने रिमोट उठाया, पुलिस अंदर आई तो वेयरहाउस उड़ जाएगा। तभी आन्या ने अपने पैर से एक लोहे की रॉड गिरा दी। अयान समझ गया था, उसने राघव पर जंप किया, रिमोट जमीन पर गिर गया। एक जोर से पंच उसने मारा राघव के मुंह पे और फिर दूसरा पंच। वेयरहाउस में फायरिंग शुरू हो गई। कबीर की एटीएस टीम अंदर घुस चुकी थी। राघव ने भागकर क्रेन पर चढ़ गया, अयान उसके पीछे। 20 फीट की ऊंचाई, नीचे समंदर। राघव चिल्लाया, सच कभी किसी को आजाद नहीं करता। अयान बोला, नहीं लेकिन झूठ जरूर बर्बाद करता है। कबीर ने परफेक्ट शॉट लिया, राघव के सर पे उसकी बंदूक थी, उसका निशाना था और उसने एकदम परफेक्ट शॉट लिया और धड़ाम, गोली राघव के सर से आर पार हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर गया। वो रिमोट जो राघव अपने हाथों में रखकर वेयरहाउस उड़ाने की धमकी दे रहा था, वो रिमोट अब एटीएस के पास था। कबीर और उसकी टीम दोनों बच्चों को बचाने में सक्सेसफुल हो गई लेकिन राघव जो पहले से ही मृत घोषित था अब एक्चुअल में मर चुका था।
लेकिन बच्चे आजाद हो गए, राघव मर गया। राघव ने मरने से पहले ही बॉम्ब जो था वो एक्टिव कर दिया। अब कबीर ने बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी बुलाया और बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लगी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ 59 सेकेंड, अब वो 50 सेकेंड पे आया, 40, 30, 20, 5, 3, फाइनली जो बॉम्ब एक्टिव था वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। आन्या और विवान दोनों जिंदा बच गए। 3 महीने बाद राजीव मल्होत्रा ने सारा की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था सारा फाउंडेशन, जो मिसिंग बच्चों के लिए काम किया करती थी। आयान ने अपनी डायरी की निकाली और उस पर लास्ट लाइन लिखी थी, कुछ लोग गुम हो जाते हैं लेकिन उनकी याद हमें दूसरों को बचाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें आयान जो एक ईमानदार जर्नलिस्ट था उसने एक ऐसी चीज को एक्सपोज किया जो शायद समाज के लिए बहुत हानिकारक थी, लेकिन लोगों के दिल में जो बदले की भावना पनपती है, जो बदला लेने की जिद पनपती है, वो जिद कभी कभी एक ऐसे बेगुनाह इंसान को मार देती है जिसकी शायद इस पूरे कहानी में कोई गलती ना हो। यही हुआ अयान की सिस्टर के साथ भी। इंसान सच से लड़ने की कोशिश जरूर करता है अपने झूठ को लेकर, पर झूठ जो है हमेशा सच के आगे जरूर हारता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर होती है बट जस्टिस जरूर मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर, सदा बहार गाने।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आज हरी 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए खुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार फोर, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से हो।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालकर गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें 1/3 करना है। लगभग 1/2 घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। I need a break। तब तक आप एक गाना सुन लीजिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग एक चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है, मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था, अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांटकर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से इस शीर खुरमा का टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। यकीन ना आए तो एक बार आप इसे ट्राई तो कीजिए जनाब। और इसके साथ आप सुनिए हमारे आचार्य 90 FM का अगला वाला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लजीज शीर खुरमा की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है उम्मीदों वाली ईद। शीर खुरमा खाकर मनाइए ईद, अपनापन जताने की हमें है उम्मीद। ईद पर घर पे बनी मीठी सेवैयां, हम ही हैं खुद अपने लाइफ के खेवैया। सेवैया में मिलाइए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, त्योहारों में छिपे हैं अपनेपन के रूट्स। केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा, केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा। खिलाकर शीर खुरमा दोस्ती को कीजिए गहरा। खाना खिलाकर जब गहरी होगी दोस्ती, तब कभी कभी होगी हल्की फुल्की मस्ती। अपनापन दिखाने का त्योहार वाला टाइम। सब्सक्राइब कीजिए आचार्य 90 एफएम, वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई, त्योहारों को मनाना और लजीज खाना खाकर अपनापन जताना, ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। और यही अपनापन जताने के लिए आपको स्वाद का जायका से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य 90 एफएम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारे महाराष्ट्र, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में श्रावण मास की पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा मीन्स नारियल पूर्णिमा इस पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन मछुआरा समुदाय समुद्र देवता की पूजा करके उन्हें नारियल अर्पित करता है और मॉनसून के बाद सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने के लिए नए सत्र की शुरुआत करता है। समुद्र देवता को शांत रहने और आपदाओं से रक्षा करने की प्रार्थना इस दौरान की जाती है। रक्षाबंधन के साथ ही मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और पकवानों का आनंद लिया जाता है। इन पकवानों में विशेषकर नारियल वाले चावल को बनाया और खिलाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बनने वाला ये नारली भात मीन्स नारियल वाले मीठे चावल ताजा नारियल, गुड़, चीनी और सुगंधित मसालों से बनता है। इसे बनाना बेहद सरल और आसान है। भाई, जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ नारियल पूर्णिमा के दिन ही बनाएं। किसी और जश्न के दौरान भी आप इस ट्रेडिशनल नारियल के चावल की यमी रेसिपी को जरूर बना सकते हैं। ये रेसिपी खास तौर पर अपनी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों? हमारे आज के इस त्योहार स्पेशल एपिसोड में हम नारियल के चावल मीन्स नारली भात को बना ही देते हैं। नारली भात बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, ताजा नारियल एक, नमक आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, ब्राउन गुड़ पौना कटोरी, केसर के धागे 10-12, लौंग 9 या 10, देसी घी 4 बड़े चम्मच, पानी 2 कटोरी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1/2 कटोरी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मीन्स काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी मीन्स चारोड़ी वगैरह। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स के बदले मिल्क मसाला को इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज इस नारली भात का लुक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें ताजा नारियल को कद्दूकस कर लेना है। हमें लगभग 1/2 कटोरी भर के ये नारियल चाहिए। फिर चावल को अच्छे से धो लेना है। चावल को पानी से धोने के बाद उसका पानी हमें हटाना है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के लिए इसे अलग से रख दीजिए।
इस तरह से भिगो कर रखे हुए चावल पकने के बाद बड़े और खिले खिले से दिखते हैं और इस वजह से हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हम नारळी भात बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें ब्राउन गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है। फिर एक पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उस देसी घी को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। अब हम उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें धीमी आंच पर हम गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। जब वो घी गरम हो जाए तब हम उसमें लौंग डालेंगे। इसे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब लौंग फूल जाएगी तब उसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे भिगो कर रखे हुए बासमती चावल और थोड़ा सा नमक भी। इसे एक बड़े चम्मच की मदद से हमें मिक्स करना है। उसके बाद उन चावलों में हम डालेंगे गुनगुना पानी और केसर के धागे। फिर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। जैसे ही चावल में तेज उबाल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन चावलों के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद चावल सारा पानी सोख कर पूरी तरह से पक जाएंगे। इस बीच एक छोटे पैन में गुड़ और नारियल डालकर उसे मिक्स कीजिए। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर बाद गुड़ पिघलना शुरू होगा। आहा, क्या बात! नारियल और गुड़ के पकने की खुशबू से सारा घर महक उठेगा और घर के लोगों के टेस्ट बर्ड्स अब एक्टिव मोड की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। मींस सबको उत्सुकता होगी कि भाई हो क्या रहा है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई पके हुए गुड़ और नारियल के इस मिश्रण को हम चावल में मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे नहीं। एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे मिक्स करने के लिए काटा चम्मच को यूज कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे। जनाब जरा रुकिए तो, मेरी बात को सुनिए तो, इतनी भी क्या बेकरारी भाई। अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम डालेंगे तैयार नारियल का मीठा चावल। इसे सजाने के लिए उसके ऊपर हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। हमारे महाराष्ट्र का नारियल चावल मींस नारळी भात त्योहारों के व्यंजन के रूप में अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। अपने साफ और धुले हाथों से इस गर्मा गर्म नारियल वाले चावल का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उस चावल के टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर एकदम नजाकत से एकदम आराम से उस निवाले को अपने मुंह में डालिए। उस चावल का अरोमा और उसका टेस्ट आपके चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली स्माइल को जरूर लाएगा। यकीन ना आए तो इस नारळी भात को आप एक बार बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे बनाकर और अपनों के साथ मिल बांट कर खाने से आप एकदम खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस नारळी भात की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है नारियल वाले मीठे चावल। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई में डाला नारियल। त्योहार को जरूर मनाएंगे
शैतान भाई और बहन अड़ियल। आया पूर्णिमा का पर्व ये पावन, खुशियों को मनाने बनाया हमने मीठा नारियल चावल। नारियल का साथ देने हमने डाला गुड़, इसकी मिठास ऐसी कि सुधार देगा आपका मूड। स्वाद का जायका ऐड करने डाली हमने लौंग। आचार्य 90 FM पर आप जरूर सुनिए सॉन्ग। मीठा नारियल चावल मींस स्वाद के संग सेहत, सिर्फ हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। सावन का महीना लेकर आया खुशियों की आहट, स्वाद का जायका शो मतलब लजीज खाने की चाहत। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक खास रेसिपी, शीर खुरमा नाम की। इस रेसिपी में बारीक सेवई, दूध, खजूर और मिठास भरी शक्कर को देसी घी के साथ मिलाकर हमने ईद को सेलिब्रेट किया। किया कि नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल किया। इस प्यारी सी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमने थोड़ी सी सजावट भी की। उसके बाद हमने नारियल पूर्णिमा का पावन पर्व भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ताजा नारियल, बासमती चावल, गुड़ और लौंग को घी का तड़का लगाकर हमने एक खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी बनाई। नारळी भात नाम से फेमस रेसिपी को रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेशन के तौर पर हमने आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: फ्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start.

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का, उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की, लेकिन कोई जॉब नहीं किया था। तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे वो मुझे, मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था धर्म में, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ। श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए। पधारो माँ पूजा को, पधारो।

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी, मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगती है,
1: भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ
0: अच्छा,
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिंड ऑफ साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
0: अच्छा,
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा, और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
0: अच्छा,
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
0: अच्छा,
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
0: अच्छा,
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई, तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी। बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
0: अच्छा,
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
0: अच्छा,
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM में ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज़ हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाएं। तो ज़रूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो ज़रूर हमें सुनवाइए।
1: सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है,
0: हाँ।
1: ये एक एहसास है
0: वाह,
1: और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: क्या
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब तो कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना यह है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है। बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छू लें, न रोको उड़ाने ये फलक छू लें, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे। बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह, अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें बेचती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हूँ। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार मनाते
1: थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
0: अच्छा,
1: खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात है
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो. क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ.
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे. तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना. फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था. तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी.
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे.
0: अच्छा.
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे. मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ. फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया. तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा. जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है. तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ. फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है. मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है. तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो. फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी.
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी. एक जैसे ये है आखर
0: लिखता
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली.
0: अच्छा.
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी. अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे.
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था.
0: अच्छा.
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर. तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना है
1: लॉ करना है.
0: अच्छा.
1: मुझे आगे लॉ करना है. तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया.
0: अच्छा.
1: बस अब क्या और क्या करना है. मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है.
0: अच्छा.
1: तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा विदाउट पे करनी है. तो पास में एक स्कूल था छोटा सा और उसमें मैं जाने लगी. वन मंथ मैंने पढ़ाया. उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ. मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाओ करो.
0: अच्छा.
1: वो घर आने लगा. मैंने उसको पढ़ाया. उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए. कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई. 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी.
0: अच्छा.
1: कि हेलो दीदी बोल रही है. मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं. मैं राजू बोल रहा हूँ. मैंने कौन राजू. अरे दीदी आप भूल गई. मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार.
0: अच्छा.
1: मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है और नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में.
0: क्या बात है.
1: मतलब मैं रो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से. तो ये मेरे को ना शुरू से था. और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध का गाय वगैरह रखते थे तो वो जब लेते थे उनसे तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी. उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे. तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं. मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो. मैं काम निपटा के 11 बजे करीब तुमको टाइम दूंगी.
0: अच्छा.
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया कि उसने 12th पास किया.
0: क्या बात है.
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादी वादी हो गई. सेट हो गए. तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी. अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: काम करते थे.
1: तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर में रह के क्या करोगी. ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ. मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना, और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे। जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है, अभी ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साई कोड़ीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स से मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज़ है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं, क्योंकि क्या है ना इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन में
1: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
0: जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
0: उनका दुख दर्द देख के
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है। आपको यही छोड़ कर जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, फिर आप पड़ जाओगे, क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
0: राइट,
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बस कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
0: कैसे रहते हैं
1: हम, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
0: राइट,
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था।
0: बराबर।
1: और आके बस
0: और आप ज्यादा
1: सोते थे, मतलब
0: प्रफुल्लित
1: होता था कि हमने हमारे कुछ तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे? जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
1: जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: कर लेंगे छोटा सा है
0: जी।
1: चलेगा
0: या
1: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
0: जी,
1: जिंदगी

0: है किस पांव पर रुक जाएगा। गीत गाओ, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ। क्या बात,
0: नई आशा नए सपने नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।